0: Sound check. Studio time. Studio time.
1: It's 2 p.m. You support the video.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका पांच सोलु खुम्बू
1: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सोलु एफएम सोलु एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली चलचित्र क्षेत्रका गीतहरू

0: उज्जवल एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 4 PM अपराह्न को 4 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन्द नगर पालिका 5 सोलुखुम्बू
3: रेड पांडा मैराथन को मिति परिवर्तन संबंधी सूचना
4: गत 2026 अगस्त 20 में आयोग विनाशकारी बाढ़ी पहरो ठूल जनधन को क्षतिप्रति हमी गहरो सकारात्मक छही राष्ट्रीय विपत्ति को गुजीला गंभीरतापूर्वक ध्यान दी उक्त मैराथन को मिति सारे हो इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति देखने अटूट सहयोग विश्वास को हमी संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाह नया मिति में इस मैराथन भव्य और सफलतापूर्वक संपन्न हामीलाई थप सहयोग सल्लाह तथा शुभकामना प्रदान गरिदिनु होला भने हार्दिक आग्रह गर्दछौ रेड पांडा नेटवर्क संघको सहकारीमा यस आयोजक समितिले आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 आयोजना गर्ने भनेको रेड पांडा म्याराथनको मिति परिवर्तन गरी 2026 नोभेम्बर 28 आयोजना गर्ने निर्णय गरेको विवरण सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ
5: अध्यक्ष निमा टेन्डु शेर्पा हिमाली स्वास्थ्य र वातावरण सुभाष सोलुखुम्बु

0: संस्कार और संस्कृति की वो मान्यता सबने दूसरी सके आजकल आत्मीयता यति कार्पेट नै हो विगत तीन दशकदेखिको सुदूर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला यति कार्पेट कार्पेटको शहनशाह
1: बत्तीको ताक है ख्याल गरौ
2: नेपाल विद्युत प्राधिकरण सोलुखुम्बु वितरण केन्द्र

0: ए बाबु मैं मेरे तो हाथ खुट्टा अनुनासा झमझम करनाशी भैराम बनाए मेरे पी के हो के खे एक बार को जिंदगी दुख दुख में बिता पर्ने उपचार कता कराने हो
1: दीदी मैं गैस्ट्रिक भर तनाव हाके हैरान भिंदा नलागे रातभर जागरण जस्ते बस् तर यह सब रोग उपचार हामजी औषधालय में हो रे उपचार कराने भर हामजी औषधालय तीर हिड़क नहीं मत आउस दीदी और संगे जाऊ
2: यहाँ नसा च्यापिएको हड्डी खिएको हात खुट्टा झमझमाउने पुरानो बाथरोग दम खोकी ग्यास्ट्राइटिस ब्लड प्रेसर अल्सर हर्निया पाइल्स फिस्टुला पिनाक कोलेस्ट्रोल टन्सिल मृगौला पित्तको पत्थरी पिसाब परीक्षण छाला सम्बन्धी समस्या योनी चिलाउने निन्द्रा नलाग्ने शरीर पोल्ने महिनावारी गडबडी लगायत सबै रोगहरूको बिना अपरेशन बिना दुखाई सफल उपचार गरिनुका साथै

संस्कार और संस्कृति की वो मान्यता सांपने दूसरी सो की आजकल आत्मता पी यू यति कार्पेट में हो विगत तीन दशक देखी को सुनो साथ यति कार्पेट किंदा कार्पेट को पसारे यति को लोगो हमें न बिस्मिल्लाह यति कार्पेट कार्पेट को शहंशाह।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्ज्वल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sign check. Solu FM. In studio time.
4: It's 7 p.m. Saturday, 7 p.m.
5: टाइम चेक को साथ मा न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु